रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: This is Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपन.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester? As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथस्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पुरख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2। Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Travel Mantra.
6: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
7: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
8: Okay, help's on its way.
9: Grab my hand!
10: Phone in a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
12: Punjab, the biggest tunes. No.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू और हर्जमैन बटर 20 kg सिर्फ £10.99।
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
3: जिंदगी बर्बाद हो गया।
4: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
5: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।
6: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
7: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply. Start.

0: surplus, abhe stop loss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 p.m.

So today's morning mantra is based on this really amazing post by Gaurav Gopal Das. I follow him and I find him really funny, really inspiring, but he very logical and practical as well. And ek post unhone upload kiya tha, I think some time back, and I just happened to read it. And unhone kaha hai isme ki alphabet jo hai na, if you look at the letter C, it sits between B and D. जैसे आपको पता है ए बी सी डी, तो बी जो है ना सी से पहले आ जाता है और डी जो है वो सी से बाद में. सो बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, सी स्टैंड्स फॉर चॉइस एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ. हैज एनीवन एवर नोटिस्ड दैट? सो बिटवीन बी एंड डी ये जो लेटर सी है ना, इट स्टैंड्स फॉर चॉइस. सो बर्थ के बाद और डेथ से पहले बीच में आ जाता है चॉइस. यानी कि बर्थ और डेथ की आस बीच में जो चॉइस है ना, दैट समथिंग दैट वी चूज. वी मे नॉट चूज हाउ अवर जर्नी बिगिंस एंड वी कैन नॉट कंट्रोल व्हेन इट एंड्स. ये आपको पता है, मुझे भी पता है, बट वी कैन चूज हाउ वी लिव इन बिटवीन. We can choose love over hate. We can choose gratitude over resentment. We can choose courage over fear. We can choose healing over holding on to pain. We can choose to grow, forgive, explore, and live fully. See, your life and my life is shaped by the choices that we make after our birth and before our death. So while you still have the gift of choice, you can choose a life that truly feels worth living. And why I was thinking about this so much, in fact, I was actually looking on online to see what I was trying to feel, what I was feeling inside. And I think this was

0: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Like a radio network. Proud hospitality partner.

0: है बलाइका रेडियो। लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN। Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation.

0: बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत भाई आते ही स्टूडियो में मैं परोसता हूँ आपके सामने और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आते हैं। पहला गीत दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म रंग। और अभी अभी जो गीत आपने सुना, ये लड़का कितना दीवाना है भाई, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथी गा रहे थे इस गीत को फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए। और भाई दो गीत सुनवाने के बाद हम आपको पाउंड का रेट बताते हैं, लेकिन याद दिला दूं आज मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 18 तारीख हो गई है और वक्त है भाई हमारी आपकी मुलाकात का। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 10:15 बज चुके हैं। लीजिए आइए देखते हैं SBI UK कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले आज।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK रिमाइंडिंग दैट बाई टूडेज रेट इज वेरी गुड। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में वो दे रहे हैं 129 रुपीज एग्जैक्टली एंड दैट्स मैक्सिमम 129 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच और ऑनलाइन या फिर यू कैन यूज योनो SBI UK मोबाइल ऐप टू सेंड द मनी टू इंडिया।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Yes, T and C's apply. Terms and conditions lagu hoti hain.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें dmontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन। Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Leica Radio.
1: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
10: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
11: Have you noticed the way fans shout at football matches?
12: Oh, wake up!
11: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
13: Ohe aina jag se laaj, main itna zor se naachi aaj.
14: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जन्मों से हो लजना, ठीक नहीं है। ये भाई क्या है, गीत है या धमकी है? शमशाद बेगम, आशा भोसले और सहेलियां गा रही थी भाई ये कव्वाली, और ये कव्वाली चौधवी का चांद फिल्म से ली गई थी। रवि साहब का संगीत था, और आपको बताएं कि कार्यक्रम में रवि साहब ने बिना साजबाज की वैसे ही गा के सुनाई थी हमें ये कव्वाली। सुने लेते, कई संगीतकार गाते भी हैं, कई फिल्मों में अच्छे गीत वही कई संगीतकारों ने दिए हैं। खैर साहब, ये गीत हमें ले आया है इस मोड़ पर जहां अब आप आज के प्रमुख समाचार सुनेंगे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और साहब स्वागत है आपका लाइका गोल्ड पर। अब आज की खास खास खबरों में एक तो भाई सस्पेक्ट चार्ज आफ्टर मैन बिटन बाय ए डॉग, ये खबर भी काफी तूल पकड़ रही है। और इसके अलावा भाई मौसम का बदलाव जो है वो भी खबरों का हिस्सा बना हुआ है। यूके रिस्पॉन्स आफ्टर रशिया थ्रेटन्स इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यूक्रेन के साथ रशिया के युद्ध में कहते हैं भाई जो भूमिका ब्रिटेन की रही है उसके लिए भाई रूस जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और कहता है कि जो नहीं, अगर आप रुकेंगे उनको हेल्प करना तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, यानी नतीजे भोगने के लिए। ये तो खबर भाई यहाँ की, अब देखें पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला हुआ है, क्रू मेंबर की मौत हो गई है। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपॉइंट किए प्रभारी, और विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की। ट्रंप की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी मौजूदा कार्यकाल में सबसे लो लेवल पर, निचले स्तर पर है, ये सर्वे के बाद जाहिर हुआ है। और झारखंड में परीक्षा रद्द होने के बाद भी आंदोलन जारी है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। जरा विस्तार से देखें खबरों को। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। उन्हें 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अस्पताल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की अस्पताल में भर्ती कराने की एप्लीकेशन पर सुनवाई की। पीठ की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वाहिद ने की, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम इसके सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने इमरान खान की हेल्थ से जुड़े उनके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का ऑर्डर जारी किया है। भारत से भी एक खबर है भाई, अस्पताल से जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। परिवार एवं कल्याण मंत्री एवं हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की 17 अगस्त को यानी कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी हुई है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अस्पताल ने आज बताया कि उनकी हालत स्टेबल है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स पर ज्यादा ताकत के इस्तेमाल के इल्जामों से इनकार किया है। डीसीपी सचिन शर्मा की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि प्रदर्शन उस समय शांतिपूर्ण नहीं रहा जब भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद संसद की ओर जाने की कोशिश की, उस वक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बल का इस्तेमाल किया था, अदरवाइज बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया गया। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने अपील करते हुए कहा है कि सारे नौजवान एकजुट होकर 19 अगस्त को हमारे साथ आएं, पटना में राजभवन मार्च निकालेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के क्यों नहीं होती, क्या नौकरी में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन होता है, जानना चाहते हैं अपोजिशन लीडर। इंटरनेशनल खबरों में हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमले की खबर आ रही है। ये अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर है, अभी पता नहीं चल रहा कि किधर से किसने हमला किया। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UKMTO के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है और एक क्रू मेंबर की मौत भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में राज्यों में 3 अपॉइंट किए हैं प्रभारी। यूपी की जिम्मेदारी मिली है किसको, अध्यक्ष जो है BJP के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने, उत्तर प्रदेश पंजाब और गुजरात के लिए नए जो प्रदेश प्रभारी हैं इंचार्ज हैं वो अपॉइंट किए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 32 जख्मी हुए हैं। यह हादसा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर छिमका गांव के पास रात को करीब 1 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक मजदूर धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी पिकअप गाड़ी की सामने से आ रहे एक डंपर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। तमिलनाडु की विधानसभा में कल सोमवार को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि का नाम लिए जाने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ और विवाद बढ़ने लगा तो मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय ने मंत्री की ओर से माफी मांगी और कहा कि सदन में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का नाम इस तरह लेना ठीक नहीं था, उचित नहीं था। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% रह गई है जो उनके मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। सर्वे में शामिल 64% अमेरिकी सिटीजन्स ने राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के प्रदर्शन को नापसंद किया है जबकि 33% लोग उनके कामकाज को मंजूरी देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक हमला बोलते हुए कहा कि BJP और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। गोवा में कल सोमवार को कांग्रेस के एक सम्मेलन के दौरान खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, MLA बना था, तब ये अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इनके पुरखों ने कभी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति न सिखाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत, उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने कल कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत गंभीर स्तर पर जारी है लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी तक किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक बयान जारी करके भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि भारत ने अपने यहां कुछ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने यह प्रचार अपनी घरेलू सिक्योरिटी चुनौतियों से ध्यान हटाने और राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए किया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल कहा कि ऐसा प्रचार पाकिस्तान के खिलाफ भारत के गलत अभियान का एक एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जेर कंट्रोल कश्मीर और दूसरे राज्यों में जो आवाजें उठ रही हैं उनके दमन को लेकर के भारतीय होम मिनिस्टर ने बयान दिया था। बलूचिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल है उसको लेकर के भारत के होम मिनिस्टर ने कुछ आरोप लगाए थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए अब संगीत की ओर। मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाजों में सुनिए ये गीत। Very good morning to you. This is Manoranjan on Like a Gold Radio with Ravi Sharma.

मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। और भाई मैंने वादा किया था कि क्रिकेट के बारे में स्कोर बताऊंगा, पर भाई वहां तो बारिश हो रही है। भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन बीच बीच में भाई बारिश रुकावट बन रही है। ये बारिश जहाँ इसकी जरूरत होती है ना वहां तरसाती है, और जहां पर भाई क्रिकेट चल रहा है वहां जाकर के पानी बरसाती है। भारत ने भाई पहली इनिंग में 462 रन का बड़ा स्कोर बनाया था और श्रीलंका को 284 रन पर आउट कर दिया था। अब दूसरी इनिंग में बारिश के कारण खेल रुका हुआ है। भारत ने 193 रन बना लिए हैं, समय कम है, इसलिए अब वो ज्यादा रन जुटाने के लिए नहीं बल्कि जल्दी से पारी डिक्लेयर करके मेरा ख्याल है श्रीलंका को बैटिंग के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर बारिश रुकेगी तो आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड।

0: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Ye hai. Like our radio.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: और साउथ ओल्ड ट्रेवल का संदेश आपके नाम भाई FCDU has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410.
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
1: ये है लाइका रेडियो।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026 from the producers of

0: दोना। तुम भी कोई गीत साथ गा दो ना भाई, मैं तो गा लू यार, फिर वो मना करते हैं, फिर वो धमकी देते हैं। भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गाना आपको तो सुनवा दिया। और भाई ये गाना खास तौर पर गया मारियो फर्नांडिस के और मंगल भाई वाल्मीकि के, वो दोनों सुन रहे हैं इस वक्त अंबाला में, अंबाला शहर में नहीं, अंबाला शॉप में। भाई आप दोनों के नाम ही ये गीत है, मस्ती मनाइए, और मस्ती के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना, कारण ये है लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड है भाई। लेकिन मैं पहले बताने लगा था कि ये गीत क्यों लगाया हमने, इसलिए कि मेरा जो खोया हुआ पास था ना वो मिल गया। ओके थैंक यू वेरी मच। अब आइए करेंसी रेट्स में आपको बताने लगा हूं, करेंसी रेट्स नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में लैम्फाई वाले दे रहे हैं 129.47 रुपीस, पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं 375.75, श्रीलंकन रुपए 449.23, बांग्लादेशी टके 165.84 एंड अफगान अफगानी 89.29.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.51 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: One performer.
5: के सामने का प्रश्न से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
6: Countless personalities.
7: जिंदगी बर्बाद हो गया।
4: A whole universe of entertainment.
8: फंक्शन रखा हुआ है।
6: Sunil Grover live UK tour 2026.
4: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और बहन भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम का ये पड़ाव गंभीर विचारों से भरा होता है, जीवन को संवारने के लिए एकदम खरा होता है। सुनिए आज का चिंतन। आजकल भाई भारत से बहुत सारे महात्माओं का प्रवास जो है ब्रिटेन में हो रहा है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं और हमें चिंतन के लिए सामग्री वहां से मिलती है। कई हमारे श्रोता भिजवाते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि हमने ये फला जगह शास्त्रों से सुना, महात्मा से सुना, किसी कहीं ग्रंथ में पढ़ा, कुछ इतिहास से हम जानकारी जुटाते हैं। आज का चिंतन हमको भाई जिन्होंने भेजा है, एक नहीं कई लोग हैं, और कहते हैं हम सबके नाम बोलना, ठीक है भाई। ये प्रसाद वाले राजेश जी, उनकी टीम है पूरी, इनमें प्लेक्सी, अमिलिया और जेसी, मीनाक्षी, चैताली और कस्तूरी, प्रिया, मारिया, एनी, श्याम भाई एंड दीक्षा, कोई रह तो नहीं क्या? दो चार नाम पड़ोसी भी ले आते आमने सामने से कहीं से लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंतन सुनते हैं बड़े चाव से, काम करते करते कहते हैं हमारे काम में रुकावट नहीं बनता चिंतन। भाई रेडियो रुकावट नहीं, सहायक होता है आपके कामकाज में, आपकी मेहनत में, आपको थकने नहीं देता, काम को रुकने नहीं देता। तो आज का चिंतन आप सबकी ओर से। और भाई जो सामग्री है ये तो इसका श्रेय तो जाता है परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज। ये भारत से पधारे हैं, बड़े विद्वान हैं, और आज सुरेंद्र सोनी जी कहते हैं कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर लोग उन्हें सुनना चाहें तो महात्मा जी का प्रवचन मेरा ख्याल आपसे थोड़ी देर बाद ही ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुरू हो रहा है हांसलों में। अब स्वामी जी एक बात कहते हैं भरा भाइयों जो सबके जीवन पर लागू होती है। भारत में लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। सच पूछिए तो पढ़ाई लिखाई इस बात को ध्यान में रखे की जाती है कि उन्होंने किस चीज की नौकरी करनी है। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति भारत में बनाई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी तो नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ नौकरी। क्या नौकर बनने के लिए इतनी तालीम हासिल करते हो? मालिक बनो, अपना कामकाज शुरू करो। और इस संदर्भ में बड़े सरल शब्दों में स्वामी जी जो है वो एक उदाहरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक स्कूल था और वो स्कूल बड़ा प्रतिष्ठित रेपुटेड स्कूल था, इंग्लिश मीडियम से वहां पढ़ाई कराई जाती थी। और भाई वहां पर उस स्कूल का जो चपरासी घंटी बजाने वाला था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो स्कूल ने फैसला किया कि भाई उसकी नौकरी खत्म की जाए। काफी सालों से काम कर रहा था, बच्चे उससे प्यार करते थे, लेकिन उससे नौकरी से हटा करके कहा भाई हम पढ़ा लिखा चपरासी चाहते हैं, घंटी बजाने वाला पढ़ा लिखा हो, अगर किसी के माता पिता बच्चे के आए या बच्चे भी अंग्रेजी में बात करें तो वो समझ पाए। महंगा स्कूल था, स्कूल से यूनिफॉर्म दी जाती थी, स्कूल से ही और चीजें, और उसका अच्छा खासा पैसा वसूला जाता था। खैर साहब उसे नौकरी से निकाल दिया और नौकरी के लिए फिर एडवर्टाइज जो है जारी की गई अखबारों में कि एक पढ़ा लिखा चपरासी की जॉब करने के लिए व्यक्ति चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन। अब साहब चपरासी की जॉब के लिए भी सैकड़ों एप्लीकेशंस आ गई, और सिर्फ मैट्रिक नहीं, उनमें ग्रेजुएट्स भी थे। वो चाहते थे स्कूल वाले के कोई अंग्रेजी बोल सके, ऐसा चपरासी चाहिए स्कूल में। अब ये बेचारा इतने सालों की नौकरी के बाद चुपचाप स्कूल से बाहर निकल गया, चिंता में था, और ऐसे में संतों का संपर्क काम आता है। महात्मा जी से मिला, महात्मा ने कहा इतने साल नौकरी कर ली, क्या मिला? वही चपरासी के चपरासी हो, अब मालिक बन के देखो। मालिक कैसे बनूं महाराज? अपना कोई काम शुरू करो। जानते हो ऐसा काम जो तुम्हें आता है, जिसे तुम प्यार करते हो, उसके लिए तुम्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं, सूझबूझ की जरूरत है। और बहनों भाइयों जो असली एजुकेशन है ना वो है विवेक, सूझबूझ। अब इस चपरासी ने क्या किया, ठीक स्कूल के सामने समोसे बेचना शुरू किया। स्कूल के बच्चे जानते थे इसे और बच्चों से ये प्यार भी बहुत करता था। अब इसे वो समोसे लेके खाने लगे और समोसे इतने स्वाद बनाने लगा क्योंकि वो पहले ये काम कर चुका था। तो बच्चे खाने भी लगे, घर ले जाने लगे, माता पिता को भी बहुत स्वाद लगे, तो उसकी समोसों की दुकान चल निकली। अब वो जितने चपरासी बनकर कमाता था उससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। एक छोटी सी दुकान ले ली स्कूल के सामने। दुकान चली तो एक दो नौकर भी रखने पड़े और उसके बाद तो साहब उसके समोसों की सप्लाई पूरे शहर में बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल समोसे फैक्ट्रीज में बनते हैं। वो यार इस व्यक्ति का भी था, कारोबार इतना फैला कि वो लखपति करोड़पति पूछो मत। शहर में जो रामू चपड़ासी था घंटी बजाने वाला, अब वो सेठ का शहर का सेठ रामलाल बन गया था। रामलाल सेठ के समोसे भाई अब दूर दूर तक यहां तक कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। कच्चे समोसे थोड़े गर्म कीजिए या तलिए, यहां भी मिलते हैं भारत से आए समोसे। कहने का भाव यह है कि उसकी सूझबूझ, उसका विवेक, उसका अनुभव उसे कहां ले गया। फिर भाई उसी स्कूल में एक सालाना फंक्शन होना था। शहर में ढूंढने लगे कि किसको इस बार सभापति बनाएं, अध्यक्ष बनाएं। जो ज्यादा पैसे देता था उसी को बनाते थे। इस बार सेठ रामलाल का नाम काफी हो चुका था। स्कूल वालों ने उनसे संपर्क किया कि आप हमारे यहां चीफ गेस्ट बन के आइए, सालाना जलसा है। अब साहब सेठ रामलाल सकुचाते, अब वो वेशभूषा भी बदल गई थी, चेहरे पर अलग तरह की रौनक थी और सोने की चैन उसके गले में झूल रही थी, हाथ में महंगी घड़ी। जब वो स्कूल में पहुंचा, तालियां बजी, हार पहनाए गए और उसने अपनी ओर से एक बड़ी धनराशि स्कूल के लिए दान दी। और जैसे इसके बाद उन्हें बोलने के लिए कुछ कहा, लोगों ने पूछा, सर आप इस स्कूल के सभापति बने हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी बोली बिल्कुल सीधी सिंपल है, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सेठ रामलाल ने कहा, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं कढ़ा हूं, मुझे इस स्कूल से निकाला गया था। चौंक गए सब। अब स्कूल वाले भी पहचानने लगे, रही है तो वही रामू घंटी बजाने वाला है। सेठ रामलाल ने कहा, पढ़ा नहीं लेकिन मैंने सीखा है, मैंने जाना है, पहचाना है। और बहनों भाइयों आपको बता दें कि सीखना ही वो ज्ञान है। किताबी जो जानकारी है वो बहुत सारे लोगों के पास है। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत भारत में किताबी ज्ञान देकर के उन्हें क्लर्क बनाया जाता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी नौकरी के पीछे इतने लोग हैं, इतने ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। अरे डिप्टी कमिश्नर भी बन जाएंगे तो रहेंगे तो सरकार के नौकरी। अपना काम देखिए। उन्होंने पूछा, जी आप कितना पढ़े हैं? सेठ रामलाल ने कहा, अगर मैं पढ़ता लिखता ना तो फिर मैं इस स्कूल में घंटी बजा रहा होता। ये जो मेरा कारोबार फैला है ये मेरा अपना काम मैंने शुरू किया। और जो भी काम आप करें भाई अपना समझ के करते हैं तो फिर पूरा जोर लगा देते हैं। सेठ रामलाल ने कहा कि कामयाब होने के लिए किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, सूझबूझ आवश्यक है, विवेक आवश्यक है। मैं महात्मा जी से मिला, डिप्रेशन में था कि महाराज जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। महात्मा जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने यह सृष्टि रची, जिस भगवान ने यह आकाश, जल, पृथ्वी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, आसमान, रंग, खुशबू ये सब बनाए, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था? कहीं नहीं। वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ बनाने वाला कौन से कॉलेज की डिग्री लेकर के ये सब काम कर रहा है?
1: दो अनपढ़ नादान, एक तुम
0: और दूसरे
1: भगवान,
0: एक सेठ रामलाल जैसे वो लोग जो अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना कारोबार खड़ा कर लेते हैं, और दूसरे प्रभु जिसने सारी सृष्टि रचाई है, बस ये दो अनपढ़ हैं।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे और चिंतन के साथ जो गीत लता जी की आवाज में आपने सुना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म मेहरबान, सुनील दत्त नूतन और अशोक कुमार की फिल्म, संगीतकार रवि। भाई मैं कुछ धुनों को सुनकर ही पहचान लेता हूँ कि ये स्टाइल रवि साहब का है, ये कल्याण जी आनंद जी का स्टाइल है। कई लोग आप भी जो है इस तरह महसूस करते होंगे। सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान, एक तुम और दूसरे भगवान। सूझबूझ विवेक चाहिए हमें, सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के नौकरी ही करनी है और वो भी सरकारी नौकरी चाहिए। कहते हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की है, भारत में ये युवा भारत है और वो सब सरकारी नौकरी मांगेंगे और नौकरी के लिए, तालीम के लिए बस स्कूल कॉलेज पर ही डिपेंड करेंगे, सरकार पर ही डिपेंड करेंगे तो तरक्की रुक जाएगी। सूझबूझ से कारोबार अपना शुरू कीजिए, नौकर नहीं मालिक बनिए। टेक्निकल एजुकेशन हासिल कीजिए, ऐसी एजुकेशन जो काम क्रिएट करे, आप खुद भी काम करें औरों को भी काम दें। आज का चिंतन, आज का विचार भाई ये परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद जी जो भारत से पधारे हैं उनके प्रवचनों से लिया गया था। और चिंतन प्रेमी बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि इसे प्रोग्राम में शामिल कीजिए, विशेषकर भाई वो प्रसाद वाले सारे कर्मचारी वो सुनना चाहते थे और सुनना चाहते थे। सुरेंद्र सौंधी जी जो आज स्वागत कर रहे हैं स्वामी जी का अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर नेविल क्लोज हाउंसलो में। दोपहर में सत्संग है, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होना। उसके बाद स्वामी जी भारत लौटने से पहले भाई अपना आशीर्वाद, अपना प्रसाद, अपनी वाणी का जो प्रसाद है वो यहाँ बांट रहे हैं। यूके में उनका स्वागत है और लाइका रेडियो नेटवर्क पर भी हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनके विचारों के लिए। आइए चिंतन को समेटते हैं और लौटते हैं अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है मनोरंजन में।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK yani State Bank of India UK. भाई आजकल रेट अच्छा चल रहा है, वो कहते हैं कि भारत पैसे भिजवाने हैं तो हमारी सेवाओं का फायदा उठाइए। आज का रेट फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129 रुपीज एग्जैक्टली एंड दैट्स द मैक्सिमम 129 रुपए अधिकतम आप एक पाउंड के बदले प्राप्त कर सकते हैं। एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। अपनों को पैसे भिजवाइए और भाई राखी के मौके पर बहन को या माता पिता को आवश्यकता अनुसार, दोस्तों को, रिश्तेदारों को सही समय है पैसे भिजवाने के लिए भारत में। और इसके साथ ही भाई आपको बता देंगे टर्म्स एंड कंडीशन भी इस पर लागू हैं।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
1: ये है
2: लाइका रेडियो।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th ऑफ सितंबर, डी मॉन्टफोर्ड हॉल लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें dmontfordhall.co.uk
5: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: इमेजिन टर्निंग योर नेक्स्ट केक बॉक्स ऑर्डर इनटू अ मैजिकल फैमिली एडवेंचर। दिस ऑगस्ट एवरी ऑनलाइन केक बॉक्स ऑर्डर इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू अ प्राइज draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation.
8: In Dubai.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Lister. Navratri ni dhammakedar raton mate thai ja ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026, 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: जो करण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु.
2: Big Boss returns for its 20th season this September, only on Colors TV.
15: Big Boss, Big Boss, Big Boss.
2: New hits on Leica Radio.

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: और लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो नेटवर्क का भाई पुराने गीतों का खजाना। आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम और बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए। और अब अगला गीत सुनवाने से पहले याद दिला दूं कि मेरी आपकी मुलाकात दोपहर बाद एक बजे तक रहेगी। उसके बाद हमारे साथी बाली ब्रह्म भट्ट जो है फिल्मी जानकारियां लेकर के आपका साथ निभाएंगे और चार बजे तक वो प्रोग्राम पेश करेंगे। चार बजे के बाद हमारा ड्राइव टाइम शो होता है, इंतजार कीजिए।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है भाई, जिसके लिए आप वो कहना चाहते हैं, दिल से भी निकली बात दिल तक जरूर पहुंचती है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
1: Leica Extra podcast update.
0: Leica Extra. भाई बहुत बहुमूल्य जानकारी है इस बार हमारे इस एपिसोड में, ये पॉडकास्ट एपिसोड

0: Yeah, like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Mica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Mica Radio.
2: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: Star Tours UK.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
7: हर पल बन जाए पिक्चर रील।
8: Star Tours अब होगा वीकेंड और भी सुहाना। द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन Lyca Gold रेडियो, Lyca रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Lyca रेडियो मिडलैंड्स पर।
9: और कॉल 208-900-2323।
10: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises
10: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
12: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
13: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
14: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
13: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
14: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
13: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
14: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.

हैं, ये यूनाइटेड नेशंस में वहाँ की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसकी जो ये अध्यक्षा रह चुकी हैं। और इसके अलावा भाई और लोकल पॉलिटिक्स में भी भारत की इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किए। इसके अलावा आज जन्मदिन है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण का। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम। और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में बाजीराव वन, ये भारतीय सूरमा योद्धा हुए हैं, तो भाई उनको भी जन्मदिन की बधाई दें। और रणवीर शौरी, ये एक एक्टर हैं, कई फिल्मों में आपने देखा होगा इन्हें, इनका भी जन्मदिन आज पड़ता है। जालंधर में जन्मे थे 1972 में। और 18 अगस्त 1936 में जन्मे थे जाने माने गीतकार, शायर, लेखक गुलजार साहब। गुलजार साहब की लंबी उम्र की दुआ करते हैं भाई हम। और आज ही के दिन जन्म लेने वालों में एक और नाम है हमारे पास, वो है संदीप पाटिल का। संदीप पाटिल कौन है भाई? क्रिकेटर हैं, बड़े चौके छक्के लगाते थे, ऊंचे लंबे कद वाले भाई संदीप पाटिल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1956 में जन्मे थे मुंबई में। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू हिम। और बात क्रिकेट की चली तो मुझे याद है भाई, मैच चल रहा है, स्कोर कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। नोट कीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेल का चौथा दिन है। और भाई चौथे दिन में आपको बताऊं कि पहले भारत ने बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका की टीम सिमट गई 284 पर, तो लीड मिली पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में भारत की टीम ने जल्दी जल्दी खेलते हुए, क्योंकि काफी खेल बारिश के हवाले हो गया था, तो आज भारत की टीम ने 193 रन बनाए और उसके सारे खिलाड़ी आउट हो गए। तो इस तरह से उनके पास लीड थी 350 रनों से भी ज्यादा की लीड। अब श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में 21 रन बना लिए हैं और उसके दो विकेट चटका दिए हैं भारतीय गेंदबाजों ने, दो विकेट के नुकसान पर 21 रन। और भाई ये स्कोर तो बता दिया, लेकिन जो जन्मदिन मनाने वाले नाराज ना हो, बता दें कि आज जन्मदिन दलेर मेहंदी का भी है। दलेर भाई, सच बोलना है मना, जन्मदिन नहीं है क्या?

0: जमी आसमान नहीं मिलते, लता जी की आवाज, जमीन आसमान, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म, 1984 की फिल्म थी। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनाया भाई, वो गीत था चप्पा चप्पा चरखा चले, माचिस फिल्म से लिया था हमने। और उस फिल्म के और उस गीत के रचनाकार थे गुलजार साहब। गुलजार साहब आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं कि भाई रेट अच्छा चल रहा है, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए उनसे, उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए। आज का रेट 129 रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: के मीठा।
1: हमराज फिल्म का गीत लगाया था लेकिन हमरा ही फिल्म का लग गया, वो आई और जे में फर्क नहीं, जेड में जो है वो कंप्यूटर फर्क नहीं कर सका, लेकिन साहिर साहब का गीत ये डेफिनेटली है। और ये वो गीत है जिसे अवार्ड मिला था।

किसी को इज्जत देने के लिए सरकार कह देते हैं, लेकिन धरने पर बैठे लड़के कह रहे हैं सरकार ने आके हमारा हाल तो पूछा। ये रांची की बात है भाई, उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मसले बने हुए हैं। राइट भाई, इतने सारे गीत सुनवा दिए मैंने, एक भी मैसेज ऐसा नहीं आया जो ये कह रहा हो कि शर्मा जी जो गीत आपने सुनवाया वो साहिर लुधियानवी का नहीं, वो तो किसका था, किसी और का था। शकील बदायूनी साहब का था।

0: एक प्यारा सा गाना बन गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने भाई गीतों की प्रशंसा में तारीफ लिखी है, लेकिन उन्होंने लिखा कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरे नाम कर दो। वो कौन सा गीत है निकल गया, क्योंकि कुछ देर पहले आपने मैसेज भेजा था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग, क्या कहते हैं आप, हमें मुश्किलती में डाल देते हैं। वत्सला जी, थैंक यू वेरी मच। विमल राय सर,
1: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।
0: अब इतने गीतों में कौन सा गीत साहिर साहब का था, पहचानिए तो मानू और लिख करके भेजिएगा 07-424-232323 पर। आप जानते हैं, जगदीश जी बुशी में सुन रहे हैं, दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं। और कसूर बस इतना है, जुर्म बस इतना है कि उनसे प्यार करते हैं। दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं, और जुर्म बस इतना है कि उनसे प्यार करते हैं। क्या करें इस दिल का, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है दिल ने।

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का संदेश भाई, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो मौका है। वो कहती है कि वो जो पहले सावधानी बरतने की बात कही गई थी, अब वो उठा ली गई है। FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Now you all are most welcome. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals. उनका फोन नंबर है 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation,
5: in Dubai.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल, protected.

0: if I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
1: Okay, help's on its way.
2: Grab my hand!
0: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
4: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
5: Cutthroat Ke Khiladi. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
6: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई. हम धीरे धीरे प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले भाई, वीकेंड पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना यौम आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस मनाया. लेकिन साहब, कभी सोचा कि जिनकी बदौलत ये शुभ दिन हमारी जिंदगी में आया, हम उन्हें याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं. एक नाम है जिनका आज के दिन के साथ संबंध है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस. वैसे तो भाई अखिलेश यादव अपने पूज्य पिता श्री को भी नेताजी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव को, लेकिन नेताजी नाम जब लेते हैं तो एक ही व्यक्ति दिमाग में ध्यान में आता है, सुभाष चंद्र बोस. आज 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की हवाई जहाज की दुर्घटना की खबर आई थी. वह उनकी मृत्यु का तो कोई अभी तक कंफर्मेशन हो ही नहीं पाया है. बहुत से लोग कहते हैं वो जिंदा हैं, बहुत से लोग कहते हैं उसके बाद हादसे के बाद काफ़ी देर तक जिंदा रहे. 18 अगस्त 1945 को जब दूसरा विश्व युद्ध समापन की ओर बढ़ रहा था, ताइहोकू तत्कालीन ताइवान में, ताइहोकू जगह उस समय कह रहा था वो स्थान, उसमें एक हवाई जहाज की एक्सीडेंट में नेताजी के गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उनके निधन की खबर आई. हालांकि जो उनकी मृत्यु की परिस्थितियां थी उनको लेकर के लंबे समय तक ऐतिहासिक विवाद और विभिन्न मत चल रहे हैं, अटकलें चल रही, लोग कुछ कह रहे हैं, पर साहब दबंग व्यक्तित्व के स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. अगर आज उनका बलिदान दिवस है तो भाई ये गीत हम उनके अर्पण करते हैं, क्योंकि बचपन में जो जय हिंद नारा है ना, वो हमने नेताजी की तरफ से सुना और सीखा था, और स्कूल में छोटे छोटे बच्चे गाते थे.

0: kadam.
1: Nehne vai, nehne vai,
0: nanna munna rahi hu.
2: बचपन में ये गीत स्कूल में बहुत गाया हो ना भाई, स्कूल में बड़ा पॉपुलर था, जय हिंद। और हमारे महेंद्र बजारिया साहब कहते हैं कि बड़ा अप्रोप्रिएट गीत लगाया आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए, अगर हम आज उनकी पुण्यतिथि मान लें। वैसे आज के दिन वो हवाई दुर्घटना तो हुई थी जिसमें वो जख्मी हुए थे, उसके बाद अटकल नहीं अटकल। जय हिंद, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ये गीत, ये भावना, ये जज्बात उस वक्त भाई। इस बात पर भी लोग हैरान हैं कि आजादी के बाद कैसे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब तो खैर भाई फिर से सम्मान दिया गया उनको, पर नेताजी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम द इंडियंस एंड पाकिस्तानी, क्योंकि उस वक्त एक ही इकट्ठा इंडिया था जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो दोनों मुल्कों के लिए सांझी लड़ी जा रही थी। राइट,
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
5: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और रेट हम बता देते हैं भाई, स्विफ्टली के रेट है इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.44 रुपीस, पाकिस्तानी मुद्रा पाकिस्तानी करेंसी में 375.34, श्रीलंकन रुपए 448.88, बांग्लादेशी टके 165.35 और अफगान अफगानी 88.9।
6: Leica Radio.
5: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
6: Leica Radio.
5: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: Sona. Well, the gold is sold at the rate of 104 point. कितना बदला कुछ के वही चल रहा रेट पुराना, दिखता हूं अभी। Yes, 104.47 pounds per gram.
5: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
6: Leica Radio.
7: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
8: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन

0: दिल तो मेरा भी करता है कि उन सबके नाम लूं, उन्हें धन्यवाद दूं, दिल की गहराई से शुक्रिया कहूं जिन्होंने भाई संदेश भेजे हुए हैं, मैं अपने दिल पर लिखकर ले जा रहा हूं, दुआ दूंगा। कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। देशभक्ति का गीत था।
1: રેડિયો માં રવિ શર્મા ને સાંભળવાનું નહીં છોડું।
0: સિતારોં કો નજરોં મેં મહેફૂઝ રખ લો, બહુત દૂર તક રાત હી રાત હોગી, हो तुम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए और बाली ब्रह्म भट्ट का इंतजार कीजिए। हैव अ सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम।
1: दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, ओ दिल तेरा है मैं भी।
2: वाह वाह वाह, ऐसा लगा कि गाना एकदम बीच में ही अटक गया, बट दैट वॉज द एंड ऑफ द सॉन्ग। एंड अरुणा ईरानी जी, वाओ, शी इज 80 इयर्स यंग, ओवर 500 फिल्म्स, सोचो व्हाट अ पॉपुलर नेम। हिंदी में, कन्नाड़ा, मराठी, गुजराती, इन्होंने सब जमानों में एक्टिंग की। सो वर्सटाइल, एन एक्ट्रेस एंड अ डायरेक्टर, दैट्स राइट। And born on 18th of August 1946 in Mumbai. So, a proper Mumbaikar bolo na, ek jawan ladki 1946 mein jisne janam liya aur bachpan se hi acting karti badi hui. She was she's the eldest of 8 siblings. Unke parents ke 8 bacche, usme se sabse badi Aruna Irani. आपको मालूम है इनका भाई है जो इंद्र कुमार। इंद्र कुमार हैज मेड सो मैनी ब्यूटीफुल फिल्म्स, आज भी बना रहे हैं। उनकी खासियत थी कि एक ही नाम, दिल या बेटा, ओनली वन वर्ड टाइटल्स, राजा, मस्ती, फिर इश्क, फिर उसके बाद नेचुरली धमाल, फिर डबल धमाल, फिर ग्रैंड मस्ती, ये सब सीक्वल में आने लगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी, विद जस्ट वन नेम, दिल, बेटा, राजा, ऐसे। एंड वी यूज टू गो टू द सेम जिम, दर्शन्स जिम इन अंधेरी, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, तो हम बड़ी लंबी बातें करते थे। फिर हमने सोचा कि हम एक्सरसाइज थोड़ी कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, तो फिर टाइमिंग्स बदल दिए हमने। दैट्स इंद्र कुमार, व्हाट अ वंडरफुल गाय। Always used to call me to his office and we used to sit and discuss the way he used to make movies. Kafi sikha inse maine. He learned, Aruna Irani, you know, she learned dancing while working in films because she could not afford professional training for a master. Master ko paisa dena padta hai, wo paise to the nahi inke paas. So while working in films, she learned dancing. ऐसे पंगे लेते लेते सीख लिया। And awards देखो इनके, best supporting actress of पेट, प्यार और पाप, 1985 की फिल्म, बेटा 1992 की फिल्म, and 31 years after her debut, बेटा फिल्म में इनको best supporting actress का award जो मिला था। And जो पहली फिल्म थी पेट, प्यार और पाप 1985 की, शी वॉज एज्ड 39 देन एंड 24 ईयर्स आफ्टर हर डेब्यू। पहली फिल्म डेब्यू जो की थी गंगा जमुना में, 15 साल की उम्र में, 1961 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी। देन अनपढ़ एज माला सिन्हाज चाइल्ड हुड कैरेक्टर, फिर छोटे मोटे रोल्स, जहानारा, फर्ज, उपकार, आया सावन झूम के, विद महमूद इन औलाद, हमजोली, देवी, नया जमाना, देन कारवां 1971 में, बॉम्बे टू गोवा, गरम मसाला, दो फूल, फर्ज, बॉबी, फकीरा, सरगम, रेड रोज, लव स्टोरी, रॉकी, व्हाट अ रॉकिंग लेडी, दैट्स राइट। इनका रिकॉर्ड है, शी इज गॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, दैट इज 10 नॉमिनेशंस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला, थैंक गॉड, एट द फिल्म सिटी, 57th फिल्म फेयर थी, एंड दैट वॉज इन ऑन 29 जनवरी 2012। मैं लंदन पहुंचा और वहां पे फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ, वहां पे शी वॉज गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। And that was hosted by Shahrukh Khan and Ranbir Kapoor. Yaad hai na aapko? Anyway, in 1980s and 90s, she switched to playing motherly roles. Jaise ke film Beta, jahan pe unko mila. And then her latest career switched to TV, television, performing character roles, various serials. Also took up direction and production of TV serials. So none other than Aruna Irani we are remembering and wishing her a happy 80th birthday.
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: For £1 in British sterling, you can fetch up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: That was her debut. She was 15 years young, 1961 May. We are doing a tribute of Aruna Irani. And Awadhi dialect, wo film ki Awadhi dialect jo thi, usme. And she was...
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वो गाना आप देखोगे. म्यूजिक तो ऑफकोर्स नौशाद जी का था. इन्होंने हेमंत दा को गवाया था. बहुत बेहतरीन अदा से हेमंत दा ने वो आवाज़ जो उन्होंने निकाली, और एक टीचर जो अपने बच्चों को पेड़ के नीचे सिखा रहा है वो. एंड द लिरिक्स वर ब्यूटिफुली रिटन बाय शकील बदायूनी. बट इट वॉज पिक्चराइज्ड एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन दैट इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन वॉज अरुणा ईरानी. So, आप नेक्स्ट टाइम देखोगे वो गाना फ्रॉम गंगा जमुना, यू विल सी हर इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. दूसरा नेक्स्ट गाना जो मैंने चुना है, आपको मालूम है फिल्म कुदरत में वो एक कितना खूबसूरत गाना जो किशोर दा ने गाया था, हमें तुमसे प्यार कितना है ना, तो वो ही गाना परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया आर डी बर्मन के संगीत से. एंड इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन अरुणा ईरानी. सो नेक्स्ट गाना मैं आपको वो सुनाऊंगा जो परवीन सुल्ताना जी का गाना. हमें बहुत मौका नहीं मिलता ये गाना सुनाने को, लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला है तो सुनते रहिएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणा ईरानी. मेरा उनका उनके साथ काफ़ी कनेक्शन है, बिकॉज एक फिल्म थी छोटे सरकार गोविंदा जी की. डायरेक्टर थे विमल कुमार. विमल कुमार ने 1996 में मेरे से एक गाना गवाया था गोविंदा जी के लिए, मैं आया हूँ यहाँ से जहाँ से वो बड़ा ऊंचा घराना है. आनंद मिलन का संगीत था और पागल खाने वाला गाना था पागल खाना का. तो इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन गोविंदा. तो गोविंदा की जो आंट है उस फिल्म में वो है अरुणा ईरानी. एंड देन दूसरी फिल्म जिसमें मैंने म्यूजिक दिया, हम तुम्हारे हैं सनम, उसमें मैंने एक गाना जो दिया, तो उसके अंदर आप देखो तो शी इज़ द मदर ऑफ माधुरी दीक्षित. एंड दैट इज़ 2002 की फिल्म है. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, केसी बोकाड़े जी की फिल्म. एंड उसमें जो मैंने किया था वो म्यूज़िक, तो हम जब भी डिस्कस करते हैं तो बोलते बाली हम दोनों जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दोज टू फिल्म्स. So it's so sweet to share it out with you.
1: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, of female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio. Start

0: want to like a goal too? On Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Goal 2.
1: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
2: पूछ ही लो सर।
1: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
2: फरवरी सर।
3: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
4: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
1: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
0: Leica Radio Network broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire. This is Leica Radio across the Midlands.

0: podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: उम्मीद है आपको ये ट्रिब्यूट पसंद आया. गुलजार साहब, इनके इतने गाने हैं, आई कुड हैव डन अ 3 आवर प्रोग्राम ऑफ इट. लेकिन हमारे अरुणा ईरानी जी भी तो थी, और नेक्स्ट आवर में आ रहे हैं दलेर मेहंदी साहब. सो जुड़े रहिएगा. फिल्म है गोलमाल.

And what can I say? That's Dilerpa ji with all his hit songs. इन्होंने रिलीजियस गाने भी इतने किए हैं, हनुमान चालीसा से लेकर बेस्ट ऑफ गुरबानी, बाबा नानक, मेरे नाल नाल, खालसा, फिर मेरे राम, एक अरदास भात किरत की, अल्लाहू मौला साई, एंड देन बिस्मिल्ला, एंड 300 साल गुरु दे नाल, से ये सब इन्होंने रिलीजियस में भी बहुत हिट रिकॉर्ड्स निकाली. एंड देन मूवी सॉन्ग्स थे साडे नाल, जियो रे बाहुबली, दंगल. मतलब दलेर मेहंदी ने शुरुआत की थी विद एल्बम्स. एंड व्हेन ही मेट मी ही वाज सॉर्ट ऑफ सेइंग, पाजी असी फिल्मा दे गाने नाल असी नहीं ना बनाया, असी बनाया एल्बम्स दे नाल, तुसी भी एल्बम करया करो. सो मैंने भी गब्बर मिक्स और ऐसे एल्बम्स बनाए और उसमें से भी अवार्ड्स मुझे भी मिले. सो हम दोनों पैरेलल भाई एंड मिका के साथ, अगर आप मेरा फेसबुक भी देखोगे तो हम तीनों भाई साथ में हैं उसमें फेसबुक पे. सो आई एम सो प्राउड ऑफ दीज टू ब्रदर्स. एंड दिलेरपा जी, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एंड आई ऑलवेज सेंड हिम अ मैसेज. इफ ही इज फ्री देन ही कम्स अलोंग ऑन द रेडियो एंड ही टॉक्स टू अस. सो वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग हिम अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ, बिकॉज ही इज अ वेरी इंडिविजुअल आर्टिस्ट. इन्होंने विश्व भर में इतना अच्छा नाम कमाया. सो दिलेरपा जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम गोना ट्राई एंड कॉल हिज नंबर, अगर मिल गए तो अच्छा रहेगा. लेट्स गिव इट अ गो. या दिलेरपा जी. फोन तो बज रहा है.

0: आज बिजी होंगे, हर तरफ प्रेस जमी होगी वहां पे, और इंटरव्यूज के बाद इंटरव्यूज।
1: थैंक यू सो मच पाजी।
0: तुसी लाइव हो रेडियो, लाइका रेडियो ते थाउजेंड्स ऑफ लिसनर्स आर लिसनिंग टू यू, ते जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयां पाजी।
1: बहुत थैंक यू भाजी, बाली भाजी मजा आ गया, और तुहाडा बहुत शुक्रिया पूरे जिन्ने व्यूअर्स है, सुनने वाले जिन्ने फैंस ने।
0: हां जी,
1: मैं सारा बहुत बहुत प्यार है तुहाडी मेहरबानी।
0: अज की हो रहा उते बर्थडे दा, की हो रहा उते इंतजाम?
1: भाजी इत्थे रब दी मेहरबानी है, ए हुणे मेरे ख्याल तीन केक कटाए ना मैं।
0: अच्छा,
1: तीन तीन केक कटाए और
0: सानू ते असी रोटी खान बैठ जांदे ते असी किसे नू पिछे नहीं छड़दे, है ना?
1: सही गल।
0: हां, तुहाडे नाल बुखारा दे विच किन्नियां रोटियां असी पाड़ियां।
1: बहुत मजा बल भाई, बहुत शरगा।
0: थैंक यू पाजी, साडे लिसनर्स वास्ते बस एक लाइन दे दियो फिर मैं चल जाऊंगा। बोलो तारा रारा हो जावे या ना ना ना ना ना रे।
1: ओके ओके,
0: थैंक यू पाजी।
1: मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, और जीने का ले ले मजा, और डरने की क्या बात है।
0: दिल खुश हो गया मेरा, बड़ी देर तो गल नहीं हुई, मैं फोन करांगा, रज के गल करांगे आपां।
1: थैंक यू भाई, डन, थैंक यू,
0: लव यू लॉर्ड्स। देयर यू गो, दैट वाज दलेर पाजी, सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल, तीन तीन केक्स काट लिए और तो भी फोन उठा लिया और उन्होंने बात भी की, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपको अच्छा लगा? अभी कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन में क्या होने वाला है मैं अभी बताता हूं आपको।

अभी आपने सुना विक्टोरिया 203। अगर मैं इसकी जगह एक और गाना आपको सुनाऊं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एक आवाज ऐसी जो आपको ताजा कर देगी, सुनिएगा, इतना मजा आएगा। ओके, रेडी?

0: ये बात हुई ना, अब ये आवाज अगर आप लाइव बैठ के सुने तो सोचो क्या मजा आए। लाइका रेडियो नेटवर्क एंड सून टू लॉन्च स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स टीम्स अप विद अनुज चोपड़ा फाउंडेशन फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद गजल्स एंड एलिगेंस फीचरिंग लेजेंडरी अनूप जलोटा जी। Hosted by none other than हमारी अपनी अनीसा नासर जी। Yes, on Sunday 30th of August at Queen's Theatre, Romford from 6 PM। और मैं वहां 5 बजे से बैठा रहूंगा because मैं उनसे मिलूंगा, हम बातें करेंगे इन द ग्रीन रूम अनीसा नासर जी के साथ और उनके साथ फोटोज खिंचाएंगे, फिर मैं मेरी सीट पे चला जाऊंगा। आप भी आएंगे ना? Now you could be very lucky. We have 2 tickets to give away. Simply send the word Ghazals. Ghazals ka spelling aapko de deta hoon. G-H-A-Z-A-L-S. G-H-A-Z-A-L-S. For you to be in to win. Aur Ghazals ke saath aapko kya karna hai? Aapka naam, full name, telephone number aur email ID. बस ये 3 मुझे दे दिए और साथ में गजल्स लिख दीजिएगा। एंड विनर्स टिकट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस वहां से ऑन द इवनिंग ऑफ द शो। योर नेम एंड नंबर विल बी यूज्ड फॉर आईडी पर्पसेस। ये तो आप समझ गए ना। नाउ queenstheatre.co.uk यहां से आप टिकट खरीद भी सकते हैं अगर आप नहीं जीते तो। इफ यू डोंट विन डोंट वरी, यू कैन बाय टिकट्स फ्रॉम queenstheatre.co.uk. Don't forget the UK's first Ghazals radio station. Laika Radio Ghazals launches soon and I'm really looking forward to that one. Hari Haran ji se baat hui, Anup Jalota ji se baat hui, Suresh Vadkar ji se baat hui, sab log itne khush hain, aap unki awaazein sunenge. Lekin aaj competition ka baat चल रहा है, कंपटीशन की बात चल रही है, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन गिविंग यू 2 tickets फॉर द 30th ऑफ ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड फ्रॉम 6 PM। सो भेजिएगा गजल्स, पूरा नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। गुड लक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Radio. Laika
3: Radio. Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Lester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्ज बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
2: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
2: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
2: Official radio partner, Laika Radio, Greater Manchester.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
6: अब आपको एक छोटी सी कहानी बताना जरूरी है. अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका मजा चला जाएगा. कवि प्रदीप जी ने एक फिल्म थी नास्तिक 1954 में. उन्होंने सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक गाना तैयार किया और इसके बोल थे, देख तेरे संसार की क्या हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. तो उसके जवाब में साहिर लुधियानवी, हमारे जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, उन्होंने मदन मोहन जी के साथ बैठकर और फिर एक गीत लिखा इन रिप्लाई टू व्हाट वाज रिटन, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान. कवि प्रदीप जी ने जो लिखा था उसकी जगह इन्होंने लिखा, देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई. तो रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आप सुनिए, जहां पे साहिर लुधियानवी जी ने उस गाने का जवाब दिया जो कवि प्रदीप जी ने लिखा था. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी.
7: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान.
8: आई बोले शैतान.
7: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान. भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान.
8: ठीक है भगवान.
7: बदल गया.

0: भगवान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान।
1: So there you go. कैसा लगा आपको? तो आगे जाते हुए हम कुछ आपको खबर देते हैं कि लंदन शहर में क्या क्या हो रहा है और होने वाला है। जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स आमंत्रिका मयूरी पटालिया, सैटरडे 3rd ऑफ अक्टूबर एट हैरो आर्ट्स सेंटर। टिकट्स फ्रॉम बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a radio and Sanjay Kapoor live. That's right. Jay's Entertainment brings to you Bollywood Legends live in London with Sanjay Kapoor, singers Aman Trika and Mayuri Patalia. Sunday, 27th September at Leicester's De Montfort Hall. Exclusive radio partner Like a Radio. Like a
2: Radio. This. He's like a radio across the Midlands.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
5: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: आखिरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Next, Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands.

0: Hot Soft Gloss, Up Her Stop Gloss.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP.
1: Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: It's time for everyone's favourite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location.
1: High appreciation
2: in Dubai.
1: Let's up. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School. Let's up. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, like our radio.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
1: It's back and it's bigger.
7: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
7: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: भोजपुरी बवाल.
11: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है.
12: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
13: कहां सही झगड़ा चला था भाई.
7: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी.
0: इट्स समर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: பன்னீர்.
1: Easy listening with Radio Wally. Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: Leica Radio.
1: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: थोड़ा थोड़ा प्यार कर लिया है और थोड़ा थोड़ा प्यार बाकी रख रही हूँ ताकि वापसी के लिए कुछ तो मिले।
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And your gold is currently trading at £103.56 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special.
2: Leica Radio.
0: It's what you guys have been saying to me since 7 o'clock. Since I told you that मैं एक छोटी सी छुट्टी ले रही हूँ, 8 दिन मैं वापस आ जाऊंगी। सोचो कितना जल्दी वक्त गुजर जाएगा, फिर भी ये डायलॉग आप मारने से बाज रहे। So is your Lazy Lounge special. और इसके बाद मैं भी एक और लेजी लाउंज स्पेशल आपके नाम करूंगी इस गाने के जवाब के पेश में।

0: एग्जैक्टली आपको छोड़ के मैं कहाँ ही जाऊंगी, बस छोटी सी मुन्नी सी 8 दिन की छुट्टी है. एंड एज आई सेड एवरीबॉडी डज डिजर्व अ ब्रेक, बट एक्चुअली मोर देन मी यू नो आई हैव सेड दैट. So thank you so, so, so much. And of course, I'm going to be active on my social media. So if you really do miss me too much, just head over to my social media and catch up with me there. Sita, lots and lots of love going out to you as well. I'm glad you're having a lovely evening. Jasmine, lots and lots of love to you as well.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Now, मैंने कहा था कि आपके लेजी लाउंज का जो गाना चॉइस था, which is आज जाने की जिद ना करो, उसका जवाब मैं दूंगी अपने स्टाइल से एक और लेजी लाउंज के साथ. तो ये गाना मैं आपके नाम कर रही हूँ, ठीक है?

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Lyca Radio Midlands. Magical moments of Radio

0: ये है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: बहुत बड़ा किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
4: पूछ ही लो सर।
3: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
4: फरवरी सर।
5: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
6: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
3: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं, दिमाग भी जीतेगा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.